हथियार थोड़े रखते हो या बहुत, घरों से निकल आओ और अल्लाह के रस्ते में माल और जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, बशर्ते के समझो। अगर माल गनीमत आसानी से हासिल होने वाला और सफर भी हल्का होता तो ये तुम्हारे साथ शौक से चल देते, लेकिन मुसाफत इनको दूर दराज नजर आई तो उज्र करेंगे और अल्लाह की कस्में खाएंगे कि अगर हम ताकत रखते तो आपके साथ जरूर निकल पड़ते। ये इस तरह अपने आप को हलाक कर रहे हैं और अल्लाह जानता है कि ये झूठे हैं। अल्लाह तुम्हें माफ करे, तुमने पेशतर इसके कि तुम पर वो लोग भी जाहिर हो जाते जो सच्चे हैं और वो भी तुम्हें मालूम हो जाते जो झूठे हैं, इनको इजाजत क्यों दी? जो लोग अल्लाह पर और रोजे आखिर पर ईमान रखते हैं वो तो तुमसे इजाजत नहीं मांगते कि पीछे रह जाएं, बल्कि चाहते हैं कि अपने माल और जान से जिहाद करें, और अल्लाह परहेजगारों से वाकिफ है।

0: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202
3: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खा इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खा रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300 3569

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9-8-91-800-51
1: अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी
2: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे
1: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर
2: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: ॾखण भरिसां अलम लॻाइण दौरान करंट लॻण सां पौधनि जो अंग वधी अटकी वियो। लोलाई ज़ाहिद लोलाई फौत थी विया। इलाक़े वासियुनि मूजिबि अदादारनि पारां अलम पाक लॻाइण दौरान हथनि मां निकिरी वञण सां बिजली जे तारनि में किरी पियो, जंहिं सां वाक़ियो पेश आयो। मोरू वेझो टूर प्लाज़ा दर्द शाख वटां हिकिड़े जो लाश तितला ते पुलिस पहुची लाश सिविल अस्पताल मोरू मुंतकिल करे छॾियो। पुलिस मूजिबि पहुती सुञाणप दर्स घोट जे आशिक़ हुसैन अबड़ो तौर थी आहे। वारसनि जो चवण आहे त ख़दशो आहे त नौजवान खे क़तल कयो वियो आहे। वाकिए जी जांच कयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारनि ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-33-8-5-6-9।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा।
6: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेहराबपुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेहराबपुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
6: ऑफिस जी मेहराबपुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेहराबपुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GAFM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Harniya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर सूमर।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

अमरीका ऐं ईरान विच में हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोडमेप मंज़ूर। टेक्निकल ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो बर्गन स्टॉक रिज़र्व में जारी रहंदो। आला सतह कमेटी जे क़याम ते बेतफ़ाक़ इस्लामाबाद मुफ़ामती यादाश्त नामे तहत स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जो पहिरियों दौर मुकमल। कतर ऐं पाकिस्तान जो गॾियल पतरनामो जारी। परडे॒ही खाते मूजिबि आबना हुर्बस में जहाज़नि जे अचु वञु बकार रखण ऐं कंहिं बि क़िस्म जी ग़लति फ़हमी खां बचण लाइ हार्ड लाइन क़ाइम। लबनान जंगबंदी ते अमल दरामद लाइ डी कंफ्लिक्शन सेल ठाहिण ते बेतफ़ाक़। खेटमी प्रोग्राम पाबंदनि तकरारनि जे हल लाइ धारदार वर्किंग ग्रुप क़ाइम। चाकरे कंदड़ मुल्क ॻाल्हियूं तामीरी माहौल में अॻिते वधाइण लाइ कोशिशूं जारी रखंदा। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराग़ची चयो आहे पाकिस्तान ऐं कतर जे चाकरे सबब लबनान जंग जे ख़ात्मे में वॾी अगबराई थी आहे। ईरान ते लॻायल तेल ऐं पेट्रो केमिकल जे बरामद ते लॻायल पाबंदियूं ख़तम थी वियूं आहिनि। आबन हुर्मस में सामूरी जहाज़नि चुरपुर ते लॻायल पाबंदी ख़तम करण समेत कुझु मंझंदि असासा बि बहाल थी विया आहिनि। ईरानी परडे॒ही खाते ते बाक़ाई चवाद मफ़ामती यादाश असरादे नमूने लागू करण लाइ टेक्निकल टीमूं अॼु खां पंहिंजो कम जारी रखंदियूं। अमले ऐं टेक्निकल पासनि खां कम अञा बाक़ी आहे। अमरीकी नायब सदर जे डी विलियम्स चयो आहे त समूरी दुनिया में पाकिस्तान जी साराह थी रही आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहितरीन कम कयो। मुंहिंजी ज़िंदगी में ॿ अहम तरीन शख़्सियतूं, हिकु पाकिस्तानी ऐं ॿी भारतीय आहे। भारतीय शख़्सियत मुंहिंजी घरवारी ऐं पाकिस्तानी शख़्सियत फील्ड मार्शल आज़म मुनीर आहे। सचियो आहे त गुज़िरियल 3 महीननि में जेतिरो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां राब्तो रहियो, एतिरो कंहिं ॿिए सां राब्तो ऐं ॻाल्हि ॿोल नाहे थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बिना कंहिं शक जे हिकु अज़ीम सिपा सालार आहे, पर मूंखे लॻे थो त हुन सां गॾु हिन पाण खे माहिर सफ़ारतकार पिणु साबित कयो आहे।

अमरीकी सदर ईरान के बीहर धमकी डोनाल्ड ट्रंप चयात ईरान के लबनान में पंजी प्रॉपर्टीज के दुकान पैदा करण का बिना देर रोकण घुर्जे। ईरान ये न कहो तो खेस गुजरियल हफ्ते दिया बीहर पूरी ताकत से निशानो बढ़ाईंदी। दखण भरसा आलम लगान दौरान करंट लगन सबब फौतन जो अंग वधी अठ थी वो 15 जणा जख्मी। गोठ बुढ़ो में बिजली के हाई वोल्टेज तार में करंट लगन सबब दीन मोहम्मद लोलाई, सनत भाव हिदायतुल्ला लोलाई, शफीक अहमद लोलाई, हसन सोरंगी, वहीद लोलाई, खालिद लोलाई और जाहिद लोलाई फौत थी वह। इलाके वास मौजूद पत्रकार पारा आलम पाक लगान दौरान हथन में निकली वन सबब बिजली के तार मत किरी पो जै सबब ही वाकियो पेश आयो। कोरबा में पंज डी कतल थे आमना कॉस्टेल के कातिल की गिरफ्तारी लाए वारसन पारा भुख हड़ताल कैंप कायम। वारसन कातिल सरेआम घुमी रहा खामोश रहने धमकाए रहा नोटिस वी तहफुज फराम कया वे।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0303535921200
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे तो राब्ते लाइ 0301-2196-8051

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

अमेरिका ऐं ईरान विच में हतमी मुआदे जे लाइ 60 ॾींहनि जो रोडमैप पंतो लबनान जंगबंदी ते अमल दरामद जे लाइ इतफ़ाक़ करे वरितो आहे। अमेरिका ईरान विच में इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाशनामे तहत ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रखण जो फ़ैसिलो। निगरानी जे लाइ कमेटी जे क़याम ते बि इतफ़ाक़। स्विट्ज़रलैंड में थियल ईरान अमेरिका ॻाल्हियुनि जो गॾियल पतनामो जारी। आमना हरमूज़ में जहाज़नि जे अचवञ बहाल रखण ऐं ग़लतफ़हमीअ खां बचण जे लाइ हॉटलाइन बि क़ाइमु। एटमी प्रोग्राम पाबंदियुनि ऐं तकरारनि जे हल जे लाइ धारदार वर्किंग ग्रुप्स क़ाइमु कया विया। परदेही खाते पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त डीकन्फेक्शन सेल में लबनान ऐं सालिस मुल्क शामिल हूंदा। चाकरी कंदड़ मुल्क ॻाल्हियूं तामीरी माहौल में अॻिते वधाइण जे लाइ कोशिशूं जारी रखंदा। टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं बर्गस्टाक रिसोर्ट्स में जारी रहंदियूं।

ईरान जी नाकाबंदी खत्म करे कुछ मुंजमद असासा बहाल क्या वह पाकिस्तान कतर की टाकड़ी में लबनान जंग के खात्मे के लिए भी अहम अगहरा थी है। ईरानी परदेही वजीर अब्बास अराग़ची चवे तो तेल पेट्रोकेम की बरामद तां भी पाबंदी हटाई व्यू हैं। ईरान की रहस्य तामीर तरक्की जो नव मनसूबो भी शुरू कर अमेरिकी सदर जी ईरान के बीहर धमकी लबनान में चिकतान बधाने का रोकने जो मुतालबो डोनाल्ड ट्रंप चवे तो ईरान संदस गाल न मनी तो खेस बीहर निशानो बनाए वो ईरानी क्यादत अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकिन के रद्द कर छोड़ो।

0: ऐं ॾखण वेझो अलम पाक बुलंद करण दौरान करंट लॻण सबबि फोत थियल 8 ॼणनि जी जनाज़े निमाज़ अदा। ॻोठ बडो में दरगाह नूरशाह ते अलम पाक बुलंद करण दौरान अरबाब हसन ऐं ॿिया फोत थिया हुआ। एस एस पी शिकारपुर ऐं शिया अॻवाननि समेत सियासी समाज जे अॻवाननि शिरकत कई। माहौल सोगो आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8-5-69।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836
0: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1556-724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000002734, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836
4: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1557-724
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

गैर मौजूदगी सूबे के अधिक नुकसान पहुंचाया। इरसा इजलास में सिंधु आवाज़ नौजवान सभा पानी बिल बाबत मनपसंद फैसला किया गया।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई, 0307359210।
1: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3583-569, 0300-3583-569।

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: हलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-51।
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383-85-569-0300-33-8-5-6-9।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सुनिए GAFM रेडियो, गाने मस्ती और ढेर सारा फन, आपके दिल की धुन हर पल।
2: भरपूर सहकार कंदुस अमेरिका ईरान विच में हतमी माहदे के लिए 60 दिन जो रोडमैप मंजूर। लबनान जंगबंदी ते अमल दरामद के लिए डीकन्फ्लेक्शन सेल ठाने ते इतफाक। अमेरिका ईरान विच में इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त नामे तहत गालन जो सिलसिलो जारी रखने जो फैसलो। निगरानी के लिए आला सतही कमेटी के क्याम ते इतफाक। स्विट्जरलैंड में थियल ईरान अमेरिका गालन जो गदल पदनामो जारी। आबदा हरबुल बे जहाजन के अचवन बहाल रखन ए गलतफहमी का बचने के लिए हॉटलाइन भी कायम। एटमी प्रोग्राम पाबंदी ने तकरार के हल के लिए धारधार वर्किंग ग्रुप्स कायम। परे खाते है डी कन्फ्लेक्शन सेल में लबनान ए सालिस मुल्क शामिल हूं। टेक्निकल सतह से गालू जारी रहंदूँ। स्विट्जरलैंड भी रोडमैप से इतफाक के सुठो सवण करारींदे है। रोडमैप टेक्निकल सतह से गालू के लिए साजगार माहौल फराहम कह। ईरानी सदर मसूद पेज़िश्कियान के सुभाने पाकिस्तान के दौरे से अचान का इम्कान। सफाती दरीन मूजिब ईरानी सदर पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे से सुभाने इस्लामाबाद पहुंचन। मसूद पेज़िश्कियान पाकिस्तान की सियासी अस्करी क्यादत से मुलाकात कह। पाकिस्तान का सूरत हाल में मस्बत किरदार से थोड़ा भी मनी। ईरान की नाकाबंदी खत्म कर कुछ मुंजमद असासा बहाल किया वह। पाकिस्तान ए कतर की टाकरी में लबनान जंग के खात्मे के लिए भी अहम अगभराई थी है। ईरानी परे वजीर अब्बास इराकी है तेल ए पेट्रो केमिकल की बरामद ता भी पाबंदी हटाई व्यू। ईरान की नए से तामीर ए तरक्की जो नव मनसूबो भी शुरू किया व्यो है। अमेरिकी सदर की ईरान के बीहर धमकी। लबनान में ईरानी प्रॉक्सीज के छिकतान वधायण का रोकने जो मुतालबो। डोनाल्ड ट्रंप चवाए तो ईरान सदर गाल न मनी तो खेस बीहर निशान बनाया वो। आबदा हरमुस से टोल टैक्स अमेरिका के वन घुर्जे। आबदा हरमुस जो कंट्रोल अमेरिका पान वट भी रखी सके। आबना हरमूज ईरान की खुदमुख्तियारी की अलामत है। आबना हरमूज बाबत हतमी फैसलो तेहरान कंदो। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती बाबत सलाहकार इब्राहिम अजीजी ट्रंप के मुखातिब थन्दे अवान धमकी दींदा आयो असा कार्रवाई कंदा आयो। आबना हरमूज अवान जो जुआ खानो ना है नई जदीद दौर के सामूडी धाड़ेलन इलाको है। आबना हरमूज बाबत फैसले जो ख्याल ईरानी अवाम ए संदस बहादुर फौज वट है बो केर भी नो कर सके। इरसा में सिंध जो नुमाइंदो शफकत हुसैन वधो बीमार होने सबब कारवां हलाने का लाचा। इरसा सिंध की गैरहाजिरी जो फायदो वठंदे मनपसंद फैसला करने लगी। आपाशी खाते इरसा के लिए मुतबादिल प्लान न जोड़ो। सूबे में पानी जो बहरान संगीन थी वो। जरिए मुजिब इरसा समूरन गजारन जा नोटिस दिना। सिंध में केर भी इजलास में शरीक न थो। पानी की सख्त खोट दौरान इरसा में सिंध की गैरमौजूदगी सूबे के नुकसान पहुंचाया। इरसा इजलास में सिंध जो आवाज न हुजण सबब पानी विच बाबत मनपसंद फैसला कया व्या। सिंध असेंबली के बजट इजलास में मेंबर जो पानी खोट जो दाहूं। सूबाई सतह से मोटरवे अथॉरिटी कायम करने की भी तजवीज। सिंध में बजट से गालाईंदे सूबाई वजीर जाम इकरामुल्ला धारे जो चयो सिंध में पानी की सख्त खोट है। पंजाब में चनाब दरिया से नव कैनाल ठाने की गाल थी रही है। सिंध हुकूमत दरिया से नवन मनसूबन से मदाहमत कंदी। नेशनल हाईवे मोटरवे अथॉरिटी कायम कर सिंध के रोड्स से कम कर सके तो। सूबाई वजीर रियाज शाह शिराजी चयो सूबे में पानी बहरान संगीन थी वो है। फसल पोखण के लिए पानी दिनों वे। फयाद भुट चयो तो मुल्क के गैस ए बिजली दींदड़ सिंध में ही गैस ए बिजली अणलभ है। सिंध में ज़रई पानी की खोट खत्म न थी। मुख्तलिफ शहर में फसल पानी न मिलने सबब सड़न लगा। बारह में एसीपी जो पानी की खोट खिलाफ एहतजाज रैली कढ़ी धरनो बह वो। मीरपुर बठोर में अवामी तहरीक जो पानी की खोट खिलाफ एहतजाज इलाके के शाखन वाहन में पानी छड़न ए फसल बचाने जो मुतालबो। दखण वेझो अलम बुलंद करण दौरान करंट लगण सबब पहुंचल अठ जणन की जनाजे नमाज बाद तस्वीन। जनाजे नमाज में जिले ऑफिसर्स शहरन इलाके वासन की शिरकत। गोठ नूरशाह ते अलम बुलंद करण दौरान करंट लगण सबब अठ जणा पहुंचा हुआ। दादू वेझो केटी जतो ही औरत मुबैना तौर घर अणमृत खीर प्रयाग बार समेत दरिया में टपोरे छो औरत जो लाश हथ मासूम बालक जो लाश न मिलो पुलिस वाके की तस्दीक कर चवे तो औरत जो लाश मिलो है बार जो ना मिलो जांच जारी है।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 333 8569।

0: मौजूद आहिन फौजी बहरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड रंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तेहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
4: अदा जल्दी कर मुख्य बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

अलहमदुल्ला इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त तहत अमेरिका ईरान विच में थियल पहिरीं आला सतही गॾिजाणी में मस्बत अघ भराई थी आहे। हतमी मुआहिदे लाइ 60 ॾींहनि जे रोड मैप ते इतफ़ाक़ थियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ईरान ऐं अमेरिका विच में स्विट्ज़रलैंड में थियल ॻाल्हियुनि बाबति जारी बयान में चयो आहे त ॻाल्हियुनि दौरान आला सतही कमेटी ते बि इतफ़ाक़ थियो आहे, जेका सियासी निगरानी सां गॾु टेक्निकल ॻाल्हियुनि जे लाइ रस्तो हमवार कंदी। अमेरिकी ईरानी क़यादत जे तामीरी ॻाल्हियुनि ते संदन थोरायतो आहियां। तारीख़ी अमल खे अॻिते वधाइण में मदद करण ते दोस्त मुल्कनि जो बि थोरायतो आहियां। ख़ासि तौर ते कतरी क़यादत जो थोरायतो आहियां। ॻाल्हियुनि खे कामयाब करण वारनि फील्ड मार्शल आसिम अली जे कोशिशुनि ते बि संदस थोरायतो आहियां। फील्ड मार्शल जी कोशिश ऐं अज़म सबबि अघ भराई थी आहे। नायब वज़ीर आज़म ऐं घरू वज़ीर जो बि किरदारु साराह जोॻो रहियो।

अमेरिका ऐं ईरान विच में हथबी मुआदे जे लाइ 60 ॾींहनि जो रोडमैप मंज़ूर थियण बाद टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी। ईरानी मीडिया मूजिब ॿिन्ही मुल्कनि विच में टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी रहंदियूं। ॿिन्ही मुल्कनि जा आला सतही वफ़द ॻाल्हियुनि जो हिसो हूंदा। ईरान जो आला सतही वफ़द रोडमैप ते इतफ़ाक़ बाद स्विट्ज़रलैंड खां वापसि ॾेह रवानो। ईरानी परदेह वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त ईरान जी नाकाबंदी ख़तम करे कुझु मुजमिद असासा बहाल कया विया आहिनि। पाकिस्तान ऐं कतर जी टाकरीअ में लबनान जंग जे ख़ात्मे जे लाइ बि अहम अगभराई थी आहे। तेल जी बरामद तां पाबंदियूं हटायूं वियूं आहिनि। ईरान जी नए सिर तामीर ऐं तरक़ीअ जो नओं मनसूबो बि शुरू कयो वियो आहे।

अमेरिकी सदर जी ईरान के ॿीहर धमकी, लबनान में ईरानी प्रॉक्सीज के छिकताण वधाइण खां रोकण जो मुतालबो। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सदस ॻाल्हि न मञी त खेसि ॿीहर निशानो बणायो वेंदो। आबदा हरमुस ते टोल टैक्स अमेरिका खे वठणु घुर्जे। आबदा हरमुस जो कंट्रोल अमेरिका पाण वटि बि रखी सघे थो। आबदा हरमुस ईरान जी ख़ुदमुख़्तियारी जी अलामत आहे। आबदा हरमुस बाबति हतमी फ़ैसिलो तहरान कंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी ट्रंप खे मुख़ातिब थींदे चयो आहे त अवां धमकियूं ॾींदा आहियो, असां कार्रवाई कंदा आहियूं। आबदा हरमुस अवां जो जुआ ख़ानो नाहे, नई जदीद दौर जे सामूरी धाड़ेलनि जो इलाइक़ो आहे। आबदा हरमुस बाबति फ़ैसिले जो इख़्तियार ईरानी अवाम ऐं संदसि बहादुर फ़ौज वटि आहे, ॿियो केरु नथो करे सघे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर उहिदे तां मुस्तफ़ी कैंडाउन स्ट्रीट ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे केयर स्टार्मर मुस्तफ़ी थियण जो ऐलान कयो। केयर स्टार्मर चयो त हिन मुल्की मईशत खे ॿिनि सालनि दौरान मज़बूत कयो। पार्टी ख़्वाहिश ते उहिदो छॾे रहियो आहियां, ईंदड़ वज़ीर आज़म सां भरपूर सहकार कंदुसि। इरसा में सिंध जो नुमाइंदो शफकत हुसैन वधो बीमार हुअण सबबि कारवावार हलाइण खां लाचार। इरसा सिंध जी गैरहाज़िरी जो फ़ाइदो वठंदे मनपसंद फ़ैसिला करण लॻी। आपाशी खाते इरसा जे लाइ मुतबादिल प्लान न जोड़ियो। सूबे में पाणीअ जो बहरान संगीन थी वियो। ज़रियनि मूजिबि इरसा समूरनि गॾिजाणियुनि जा नोटिस ॾिना। सिंध मां केर बि इजलासनि में शरीक न थियो। पाणी जी सख़्त खोट दौरान इरसा में सिंध जे गैर मौजूदगीअ सूबे खे वधीक नुक़सान पहुचायो। इरसा इजलास में सिंध जो आवाज़ न हुजण सबबि पाणी विकस बाबति मनपसंद फ़ैसिला कया विया। सिंध असेंबलीअ जे बजट इजलास में मेंबर्स जूं पाणी जी खोट जूं दाहूं। सूबाई सतह ते मोटरवे अथॉरिटी क़ाइमु करण जी बि तजवीज़। सिंध में बजट ते ॻाल्हाईंदे सूबा वज़ीर जाम विक्रामला धारे जो चयो त सिंध में पाणी जी सख़्त खोट आहे। पंजाब में चना दरिया ते नओं कैनाल ठाहिण जी ॻाल्हि थी रही आहे। सिंध हुकूमत दरिया ते नवनि मनसूबनि ते मज़ाहमत कंदी। नेशनल हाईवे ऐं मोटरवे अथॉरिटी क़ाइमु करे सिंध जे रोड्स ते कमु करे सघे थो। सूबा वज़ीर रियाज़ शाह शिरादी चयो त सूबे में पाणीअ जो बहरान संगीन थी वियो आहे। फसल पोखण जे लाइ पाणी ॾिनो वञे। फयाज़ भुट चयो त मुल्क खे गैस ऐं बिजली ॾींदड़ सिंध में ई गैस ऐं बिजली अणलभ आहे।

सिंध में ज़रई पाणी जी खोट ख़त्म न थी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में फसल पाणी न मिलण सबबि सड़न लॻा। वाराह में SUP जो पाणी जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज, रैली कढी धरनो बीहायो वियो। मीरपुर भठोरो में अवामी तहरीक जो पाणी जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज, इलाइक़े जे शाखनि ऐं वाहन में पाणी छॾण ऐं फसल बचाइण जो मुतालबो। सिंध हाईकोर्ट कराची SPSC में गॾियल चटाभेटी 2024 जे पेपर जो समूरो रिकॉर्ड 30 जून ते तलब करे वरितो। AG सिंध चयो त केस खे कानून मूजिब हलायो वञे। अदालत पब्लिक सर्विस कमीशन जे कंट्रोलर इम्तिहान खे तलब नथी करे सघे।

0: खोड़ा वेझो ॻोठ रीडल आशारी में एच आई वी मुतासिर वधीक हिकु ॿारु फोत एच आई वी मर्ज़ विझी ॾह महीननि जो हसन दस्तगीर पुटु नवीद लाशारी फोत थी वियो। हिकु हफ़्तो अॻु साॻे ॻोठ में टिनि महीननि जी साइमा धीअ नादिर लाशारी पिणु एच आई वी विझी फोत थी वई हुई। एच आई वी विझी ॿारनि जी फोतगीअ सबबि रहवासियुनि में गॾु
1: रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-383-569-0300-5369।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जेका सियासी निगरानी सां गॾु टेक्निकल ॻाल्हियुनि जे लाइ रस्तो हमवार कंदी अमेरिकी ईरानी क़यादत जे तामीरी ॻाल्हियुनि ते संदन थोरायतो आहियां, अॻिते वधाइण में मदद करण ते दोस्त मुल्कनि जो बि थोरायतो आहियां, ख़ासि तौर ते कतरी क़यादत जो थोरायतो आहियां। ॻाल्हियुनि खे कामयाब करण वारनि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी कोशिश ते बि संदसि थोरायतो आहियां। फील्ड मार्शल जी कोशिश ऐं अज़म सबबि अॻभराई थी आहे। नायब वज़ीर आज़म ऐं घरू वज़ीर जो बि किरदारु साराह जोॻो रहियो।

ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान जी सुभाणे पाकिस्तान जे दौरे ते अचण जा इम्कान सफ़ाती ज़रिए मूजिब ईरानी सदर पाकिस्तान जे मुख़्तसर दौरे ते सुभाणे इस्लामाबाद पहुचंदो। मसूद पज़िश्कियान पाकिस्तान जी सियासी अस्करी क़ायद सां मुलाक़ातूं कंदो। पाकिस्तान जा सूरतहाल में मस्बत किरदार ते सोरा बि मञींदो। अमेरिका ऐं ईरान विच में हतमी मुआदे जे लाइ 60 ॾींहनि जो रोडमैप मंज़ूर। लबनान में जंगबंदीअ ते अमल दरामद जे लाइ डी कंफ्लेक्शन सेल ठाहिण ते इतफ़ाक़। अमेरिका ऐं ईरान विच में इस्लामाबाद मुफ़ाहिमती यादाश्त नामे तहत ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रखण जो फ़ैसिलो। निगरानी जे लाइ आला सतही कमेटी क़ाइम। स्विट्ज़रलैंड में थियल ईरान अमेरिका ॻाल्हियुनि जो गॾियल पतनामो जारी। आबिदा हरमूज में जहाज़नि जे अचवञ बहाल रखण ऐं ग़लतफ़हमीअ खां बचण जे लाइ हॉटलाइन क़ाइम। एटमी प्रोग्राम पाबंदियुनि ऐं तकरारनि जे हल जे लाइ धारदार वर्किंग ग्रुप्स क़ाइम। परदेही खाते चयो आहे त डी कंफ्लेक्शन सेल में लबनान ऐं सालिस मुल्क शामिल हूंदा। स्विट्ज़रलैंड रोडमैप ते इतफ़ाक़ खे सुठो सवण करार ॾेई छॾियो। अमेरिका ऐं ईरान विच में हतमी मुआहिदे जे लाइ 60 ॾींहनि जो रोडमैप मंज़ूर थियण बाद टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी। ईरानी मीडिया मूजिबि ॿिन्ही मुल्कनि विच में टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी रहंदियूं। ॿिन्ही मुल्कनि जा आला सतही वफ़द ॻाल्हियुनि जो हिसो हूंदा। ईरान जो आला सतही वफ़द रोडमैप ते इतफ़ाक़ बाद स्विट्ज़रलैंड खां वापसि ॾे रवानो। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त ईरान जी नाकाबंदी ख़तम करे कुझु मुंजमिद असासा बहाल कया विया आहिनि। पाकिस्तान ऐं कतर जी चाकरीअ में लबनान जंग जे ख़ात्मे जे लाइ बि अहम अगभराई थी आहे। तेल जी बरामद तां पाबंदियूं हटायूं वियूं आहिनि। ईरान जी नए से तामीर ऐं तरक़ीअ जो नओं मनसूबो बि शुरू कयो वियो आहे। अमेरिकी सदर जी ईरान खे ॿीहर धमकी। लबनान में ईरानी प्रॉक्सीज़ खे छिकताण वधाइण खां रोकण जो मुतालबो। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान संदसि ॻाल्हि न मञी त खेसि ॿीहर निशानो बणायो वेंदो। आबिदा हरमूज़ ते टोल टैक्स अमेरिका खे वठणु घुर्जे। आबिदा हरमूज़ जो कंट्रोल अमेरिका पाण वटि बि रखी सघे थो। आबिदा हरमूज़ ईरान जी ख़ुदमुख़्तियारी जी अलामत आहे। आबिदा हरमूज़ बाबति हतमी फ़ैसिलो तहरान कंदो। ईरानी पार्लियामेंट जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी ट्रंप खे मुख़ालिफ़नि खे चयो आहे तव्हां धमकियूं ॾींदा आहियो, असां कार्रवाई कंदा आहियूं। आबिदा हरमूज़ तव्हांजो जुआ खानो नाहे, नई जदीद दौर जे सामूंडी धाड़ेलनि जो इलाइक़ो आहे। आबिदा हरमूज़ बाबति फ़ैसिले जो इख़्तियार ईरानी अवाम ऐं संदसि बहादुर फ़ौज वटि आहे, ॿियो केरु नथो करे सघे।

0: दुनिया में किथे भी सियासी मुखालिफ़न खे सजाऊं नथियूं ॾिनियूं वञनि। 35 हफ़्तनि खां पीटीआई बानी सां मुलाक़ातूं बंदि आहिनि। छा वज़ीर आज़म वटि मुलाक़ात? पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो कम असेंबली में ख़िताब। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नदीम तारा जवाब ॾींदे चयो त आइन जी ॻाल्हि था कयो। हाईकोर्ट जे जज जी मुक़ररी जे लाइ आयासीं पर अवां कमेटी में न आया। अदालती मामले में हुकूमत कुझु नथी करे सघे। अव्हां खे आला अदलिया में वञणु घुर्जे।
1: थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383 5769 0300 3 8 5 6 9।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018 0003।
4: अस्सलाम वालेकुम। अदा
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न थो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा।
6: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

Allah.

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमडिशन और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301386543
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 0242460100

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद करा।

0: अते दिल्ली नथी चली
1: मुझे दुकान जी भेट हरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नजगर डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
0: आई मोहम्मद उमर गोरी 03191558724
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: तव्हांजी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हांजी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन, एमए, डीएचएमएस सिंध, आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: परदेह खाते चयो आहे त डी कंफ्लेक्शन सेल में लबनान ऐं टियाकड़ी कंदड़ मुल्क शामिल हूंदा। स्विट्ज़रलैंड रोड मैप ते तफ़ाक़ खे सुठो सवण करार ॾेई छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड जे कामयाब दौरे बाद वापसि ॾेह रवानो। वज़ीर आज़म चयो आहे त अलहमदुल्ला इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त नामे तहत अमरीका ऐं ईरान विच में थियल पहिरीं आला सतही गॾिजाणी में मुस्बत अकबराई थी आहे। हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहनि जी रोडमेप ते इतफ़ाक थियो। ॻाल्हियुनि दौरान आला सतही कमेटीअ ते बि इतफ़ाक थियो आहे, जेका सियासी निगरानीअ सां गॾु टेक्निकल ॻाल्हियुनि लाइ रस्तो हमवार कंदी। अमरीकी ऐं ईरानी क़यादत जी तामीरी ॻाल्हियुनि ते सदन थोरायतो आहियां। तारीख़ी अमल खे अॻिते वधाइण में मदद करण ते दोस्त मुल्कनि जो बि थोरायतो आहियां, ख़ासि तौर ते कतरी क़यादत जो थोरायतो आहियां। ॻाल्हियुनि खे कामयाब करण वारनि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी कोशिशनि ते बि संदसि थोरो मञा थो। फील्ड मार्शल जी कोशिशनि ऐं अज़म सबबु अकबराई थी आहे।

ईरानी वफद की वॉकआउट वाली धमकी बावजूद गालिन में वरी अग भराई थी। गुजरियल 24 कलाकन सुठा रहा। लबनान में अमन रो है। आमना हुरमज भी खुलल है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस है तालमी तवानाई एजेंसी जा इंस्पेक्टर ईरान वेंदा तहरान से थियल मुआदे की निगरानी कंदा। इसराइल के दिफा वाले हक के तस्लीम क्यों था पर लबनान की खुदमुख्तियारी को भी तहफुज चाहूँ था। गालिन दौरान अमरीका पारा तय कल चार ही हदफ हासिल कया।

ईरानी सदर मसूद पेशक्यान सुभाणे पाकिस्तान के दौरे से इस्लामाबाद पहुंचो संदस आजिया ला इस्लामाबाद के पाकिस्तान ईरान के झंडन से सिंगारे वो सफारती जरिए मूजिब ईरानी सदर मुख्तसर दौरे दौरान पाकिस्तान की सियासी एस्करी क्यादत से मुलाकातू कंदो पाकिस्तान जा सूरत हाल में मुस्बत किरदार से भी थोड़ा बनी थोड़ा।

ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास राखी चयो आहे त ईरान जी नाकाबंदी खत्म करे कुझ मंजमद असासा जारी कया विया आहिनि। पाकिस्तान ऐं कतर जी ट्रैकड़ीअ में लबनान जंग जे खात्मे लाइ अहम अगभराई थी आहे। तेल जी बरामद तां पाबंदियूं हटायूं वियूं आहिनि। ईरान जी नए सिर तामीर ऐं तरक़ीअ जो नओं मनसूबो बि शुरू कयो वियो आहे।

0: आबनाए हुरमज ईरान की खुद मुख्तारी की अलामत है। आबनाए हुरमज बाबत हतमी फैसलो तहरान कंदो। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती बाबत सलाहकार इब्राहिम अजीजी ट्रंप के मुखातिब थींदे चयो तवां धमकियूं ॾींदा आहियो असां कार्रवाई कंदा आहियूं। आबनाए हुरमज अवां जो नाहे नई जदीद दौर की सामूंडी धाड़ेलन जो इलाइक़ो आहे। आबनाए हुरमज बाबत फैसले जो अख़्तियार ईरानी अवाम ऐं संदसि बहादुर फ़ौज वटि आहे, ॿियो केर नथो करे सघे। सिंध असेंबलीअ में एम क्यू मेंबर फरहान अंसारी जी एम पी एस खे बोरी बंद लाशनि जी धमकी। पीपुल्स पार्टी मेंबर्स जो एहतजाज, घरू वज़ीर पारां जांच कराइण जो ऐलान। सिंध असेंबली में ॻाल्हाईंदे एम क्यू एम पी ए फरहान अंसारी चयो त रुगो बोरी बंद लाशनि जो ज़िक्र कंदा आहियो, कॾहिं बोरी ॾिठी अथव? छा बोरी ॾिसी सघंदो? अवां बोरी सही बि न सघंदा। घरू वज़ीर ज़ियालन जा चयो त एम पी ए अणसिधी तरह ऐवान खे बोरी बंद लाशनि जी धमकी ॾिनी, हीअ ख़तरनाक ॻाल्हि आहे, मां जांच जो हुकुम ॾेई रहियो आहियां। कमेटीअ जी अवां सरबराही कयो। स्पीकर अवेस कादर शाह चयो त मां इजाज़त ॾियां थो, तव्हां जांच कराए सघो था। लफ़्ज़ इंतिहाई ग़लति आहिनि।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120

0: अमरीका ऐं ईरान विच में हतमी मुआदे लाइ सच ॾियण जो रोड मैप मंज़ूर। लबनान में जंगबंदी ते अमल दरामद लाइ डी कंफ्लिक्शन सेल ठाहिण ते इतफ़ाक़। ॿिन्ही मुल्कनि विच में हतमी मुआदे लाइ सच ॾियण जो रोड मैप मंज़ूर थियण बाद टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी। ॿिन्ही मुल्कनि जा आला सतही वफ़द ॻाल्हियुनि में शामिल। स्विट्ज़रलैंड में थियल ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जो गॾियल पधरनामे मूजिबि इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त नामे तहत ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रखण जो फ़ैसिलो। निगरानी लाइ आला सतही कमेटी बि क़ाइमु कई वई। आबनाह हुरमज़ में जहाज़नि जी अच वञ बहाल रखणु ऐं ग़लति फ़हमीअ खां बचण लाइ हॉट लाइन क़ाइमु। एटमी प्रोग्राम पाबंदियुनि ऐं तकरारुनि जे हल लाइ धार धार वर्किंग ग्रुप्स बि क़ाइमु। परॾेही खाते चयो आहे त डी कंफ्लिक्शन सेल में लबनान ऐं टकरी कंदड़ मुल्क शामिल हूंदा। स्विट्ज़रलैंड रोड मैप ते इतफ़ाक़ खे सुठो सवण करार ॾेई छॾियो। वज़ीर आज़म शाहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड जे कामयाब दौरे बाद वापसि ॾे रवानो। वज़ीर आज़म चयो त अलहमदुल्ला इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त तहत अमरीका ऐं ईरान विच में थियल पहिरीं आला सतही गॾिजाणीअ में मुस्बत अॻुवाई थी आहे। हतमी मुआदे लाइ सठ ॾींहनि जी रोड मैप ते इतफ़ाक़ थियो। ॻाल्हियुनि दौरान आला सतही कमेटीअ ते बि इतफ़ाक़ थियो आहे, जेका सियासी निगरानीअ सां गॾु टेक्निकल ॻाल्हियुनि लाइ रस्तो हमवार कंदी। अमरीकी ऐं ईरानी क़यादत जी तामीरी ॻाल्हियुनि ते संदन थोरायता आहियूं। तारीख़ी अमल खे अॻिते वधाइण में मदद करण ते दोस्त मुल्कनि जो बि थोरायतो आहियां। ख़ासि तौर ते कतरी क़यादत जो थोरायतो आहियां। ॻाल्हियुनि खे कामयाब करण वारनि फील्ड मार्शल जी कोशिशुनि ते बि संदसि तौरो मञा थो। फील्ड मार्शल जी कोशिशुनि ऐं अज़म सबबि अॻुवाई थी आहे। ईरानी वफ़द जी वॉकआउट वारी धमकी बावजूदि ॻाल्हियुनि में वॾी अॻुभराई। गुज़िरियल 24 कलाक सुठा रहिया। लबनान में अमुन रहियो आहे। आबनाह हुरमज़ बि खुलियल आहे। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस चयो आहे त आलमी तवानाई एजेंसीअ जा इंस्पेक्टर ईरान वेंदा ऐं तहरान सां थियल मुआदे जी निगरानी कंदा। इसराइल जी दिफ़ा वारे हक़ खे तस्लीम कयूं था, पर लबनान जी ख़ुदमुख़्तियारी जो बि तहफ़ुज़ चाहियूं था। ईरानी सदर मसूद पेशिकियान सुभाणे पाकिस्तान जे दौरे ते इस्लामाबाद पहुचंदो। संदसि आजीअ लाइ इस्लामाबाद खे पाकिस्तान ऐं ईरान जे झंडनि सां सिंगारियो वियो। सफ़ारती ज़रियनि मूजिबि ईरानी सदर मुख़्तसर दौरे दौरान पाकिस्तान जी सियासी ऐं अस्करी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। पाकिस्तान जा सूरतहाल में मुस्बत किरदार ते थोरा बि मञींदो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राघची चयो त ईरान जी नाकाबंदी ख़तम करे कुझु मंजमंद असासा जारी कया विया आहिनि। पाकिस्तान ऐं कतर जी ट्रियाकड़ीअ में लबनान जंग जे ख़ात्मे लाइ अहम अॻुभराई थी आहे। तेल जी बरामद तां पाबंदियूं हटायूं वियूं आहिनि। ईरान जी नए सिर तामीर ऐं तरक़ीअ जो नओं मनसूबो बि शुरू कयो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारनि ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0385 500 69।
3: अदा
4: वालेकुम असलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा
5: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी आहे।
3: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: कलेक्शन सेल ठाहिण ते बि इतफ़ाक़। ॿिन्ही मुल्कनि विच में हतमी वाइदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोड मैप मंज़ूर थियण बाद टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी। ॿिन्ही मुल्कनि जा आला सतही वफ़द ॻाल्हियुनि में शामिल। स्विट्ज़रलैंड में थियल ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जो गॾियल पधरनामे मूजिब इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त नामे तहत ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रखण जो फ़ैसिलो। निगरानी लाइ आला सतही कमेटी बि क़ाइमु कई वई। अबना हरमुस में जहाज़नि जी अच वञ बहाल रखण ऐं ग़लति फ़हमी खां बचण लाइ हॉटलाइन क़ाइमु। एटमी प्रोग्राम पाबंदियुनि ऐं तकरारनि जे हल लाइ धारदार वर्किंग ग्रुप्स क़ाइमु। परडे॒ही खाते चयो आहे त डी कन्फ्लेक्शन सेल में लबनान ऐं सालिस मुल्क शामिल हूंदा। स्विट्ज़रलैंड रोड मैप ते इतफ़ाक़ खे सुठो सवण करार ॾेई छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ स्विट्ज़रलैंड जे कामयाब दौरे बाद वापस ॾे रवानो। वज़ीर आज़म चयो आहे त अलहमदिल्ला इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त तहत अमरीका ईरान विच में थियल पहिरीं आला सतही गॾिजाणी में मस्बत अकबराई थी आहे। हतमी वाइदे लाइ 60 ॾींहनि जे रोड मैप ते इतफ़ाक़ थियो आहे। ॻाल्हियुनि दौरान आला सतही कमेटी ते बि इतफ़ाक़ थियो आहे, जेका सियासी निगरानी सां गॾु टेक्निकल ॻाल्हियुनि लाइ रस्तो हमवार कंदी। अमरीकी ऐं ईरानी क़यादत जी तामीरी ॻाल्हियुनि ते संदन थोरायतो आहियां। तारीख़ी अमल खे अॻिते वधाइण में मदद करण ते दोस्त मुल्कनि जो बि थोरायतो आहियां। ख़ासि तौर ते कतरी क़यादत जो थोरायतो आहियां। ॻाल्हियुनि खे कामयाब करण वारनि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी कोशिश ते बि संदसि थोरायतो आहियां। फील्ड मार्शल जी कोशिश ऐं अज़म सबबि अॻभराई थी आहे। नायब वज़ीर आज़म ऐं घरू वज़ीर जो बि किरदार साराह जोॻो रहियो। ईरानी अफ़वाह जी वॉकआउट वारी धमकी बावजूद ॻाल्हियुनि में वॾी अकबराई थी। गुज़िरियल 24 कलाक सुठा रहिया आहिनि। लबनान में अमन रहियो आहे। आबना हरमुस बि खुलियल आहे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस चयो आहे त आलमी तवानाई एजेंसी जा इंस्पेक्टर ईरान वेंदा ऐं तेहरान सां थियल मुआहिदे जी निगरानी कंदा। इसराइल जे दिफ़ा वारे हक़ खे तस्लीम कयूं था, पर लबनान जी खुद मुख़्तारी जो बि तहफ़ुज़ चाहियूं था। ॻाल्हियुनि दौरान अमरीका पारां तय कयल 4 ई हदफ़ हासिल कया आहिनि। ईरानी सदर मसूद पेशकियान सुभाणे पाकिस्तान जे दौरे ते इस्लामाबाद पहुचंदो। संदसि आजियां लाइ इस्लामाबाद खे पाकिस्तान ऐं ईरान जे झंडनि सां सिंगारे वियो। सिफारती ज़रियनि मूजिब ईरानी सदर मुख़्तसर दौरे दौरान पाकिस्तान जी सियासी ऐं अस्करी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। पाकिस्तान जा सूरतयाल में मस्बत किरदार ते थोरा बि मञंदो।
1: बात करते हैं बेशरम लोग
2: पंच कर रहे हैं।
1: तो बात बल्दिया फैक्ट्री के लिए पहले करते थे वो सही थी, या जो कल इन्होंने बकवास की वो ठीक थी? मैंने कोई गाली नहीं बकी।
2: अब अपने अल्फाज वापस ले ना। आपने बेशर
1: मैं कौन सा अल्फाज वापस ले लूँ?
2: हाँ ठीक है
1: सर, बेशरम
2: वो कहे ना कि मैं वापस ले लेता हूँ।
3: माफी नहीं मांगेंगे, हम बात नहीं करेंगे, इसको माफी मांगनी चाहिए।
4: टोटल स्पीच को आप एक्सपेंस करवाए।
1: सर ये मैंने कौन सी बात की? पार्लिमानी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। करें जो दिल करे। आप एनपीओ में एक थी, एनपीओ में एक है और एनपीओ में एक रहेगी।
0: सिंध असेंबली में मुतहदा मेंबर फरहान अंसारी जे एमपीएस के बोरी बंद लाशन जी धमकी। जुमलन जी डेवट का पोए हुकूमती ऐं अपोजिशन मेंबर्स हथे पेजी विया। घरू वज़ीर पारां मुतहदा मेंबर्स जे धमकियन वारे मामले जी जांच करण जो ऐलान। सिंध असेंबली में ॻाल्हाईंदे एमक्यूएम एमपीए फरहान अंसारी चयो त रुगो बोरी बंद लाशन जो जिक्र कंदा आहियो, कॾहिं बोरी ॾिठी अथव? छा बोरी ॾिसी सघंदव? अवां बोरी सही बि न सघंदा। घरू वज़ीर ज़ियाल हसन अंजार चयो त एमपीए अणसिधी तरह ऐवान खे बोरी बंद लाशन जी धमकी ॾिनी आहे। ही ख़तरनाक ॻाल्हि आहे, मां जांच जो हुकुम ॾेई रहियो आहियां, कमेटी जी अवां सरबराई कयो। स्पीकर रवेश कादिर शाह चयो त मां इजाज़त ॾियां थो, अवां जांच कराए सघो था। लफ़्ज़ इंतिहाई ग़लति आहिनि। धमकियुनि वारे मामले ते हुकूमती ऐं अपोज़िशन मेंबर्स हथे पइजी विया। हिक ॿिए खे धिका। इस्लाम सिंध जो नुमाइंदो शफ़क़त हुसैन वधो बीमार हुअण सबबि कारोबार हलाइण खां लाचार। इरसा सिंध जी गैर हाज़िरीअ जो फ़ाइदो वठंदे मनपसंद फ़ैसिला करण लॻी। आबपाशी खाते इरसा लाइ मुतबादिल प्लान न जोड़ियो। सूबे में पाणीअ जो बोहरान संगीन थी वियो। ज़रियनि मूजिब इरसा समूरियुनि गॾिजाणियुनि जा नोटिस ॾिना। सिंध मां केर भी इजलासन में शरीक न थियो। पाणी जी सख्त खोट दौरान इरसा में सिंध जी गैर मौजूदगी सूबे के वधीक नुकसान पहुंचायो। इरसा इजलास में सिंध जो आवाज न हुजण सबब पाणी वर्च बाबत मनपसंद फैसला कया विया। पिंकी कराची जी हुजे या लाहौर जी, कानून कान बचंदी। को हीरोइन जे कारोबार करे या हीरन जो, न पिंकी बचंदी न पिनको बचंदो। कौमी असेंबली में गालाइंदे घरू मामलन बाबत मुलकती वजीर तलाल चौधरी चयो त हुकूमत पाकिस्तानी पासपोर्ट जी इज़त दुनिया में वधाई आहे। सऊदी अरब 5000 फकीर पाकिस्तान मोटाया आहिनि। दुबई वारनि खे बि साॻियो मसलो आहे, अंग अखर ॾिना विया आहिनि। दहशतगर्दी ख़तम करे ई मुल्की मईशत बहितर करे सघे थी।
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569-03-00-33-8569।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0606-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
0: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
0: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-04372-0242-46-0100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा।
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
8: ओ जेड़ी आस जनवटा वजी तेड़ी मिला तन के उरी जो अब्दुल लतीफ चवे मुद वसंदा मी कंधो खण दिस की मन मारवड़न जे मरा साजे दे अडे हलौगन जी लाई एट भरी दिस पंजो आउ तो खबर

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 आई 0242-460100
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94

0: लख किताब पढ़ी वल रोवल खौफ कनु हिक रब दे रात ओडी हां डरी वल ए सब गालियां ए हां जे हां दे कर कन सुनी वल ए सच लईए तो मकसद मूल ललस रुगो मुझा विचित मरी वल
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: में मुसीबत भराई थी आए हतमी मुआदे लाए सठ डी जी रोड में पते इतफाक थो गाल दौरान आला सतही कमेटी से भी इतफाक थो है जेका सियासी निगरानी से गड टेक्निकल गाल रस्तो हमवार कदी अमरीकी ए ईरानी क्यादत की तामीरी गाल सदन थोराए तो आया तारीखी अमल के अगते वधाण में मदद करण से दोस्त मुल्क जो भी थोराए तो आया खास तौर से इकतरी क्यादत जो भी गाल कामयाब करण वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिश से भी संदस थोड़ो मना तो फील्ड मार्शल की कोशिश आजम सबब अगभराई थी है नायब वजीर आजम में घरू वजीर जो भी किरदार साराह जो घुरे हो
2: ईरानी सदर मसूद पेजकियान पाकिस्तान जा थोरा वन सुने इस्लामाबाद पहुंचो संदस अचान लाइ शहर के पाकिस्तान ए ईरान के झंडन से सिंगारे वो पहले ही तर्जुमान मौजिब ईरानी सदर एक वफद से गड इस्लामाबाद पहुंचों ए पाकिस्तान की सियासी थोड़ी अस्करी क्यादत से मुलाकात कह मुलाकात दौरान पाक ईरान मित्रपन लागापन जो जायजो वरतो वो ईरानी सदर मौजूदा सूरत में मस्बत किरदार से पाकिस्तान जहा थोरा मही
1: ईरानी वफद की वॉकआउट वाली धमकी बावजूद गाल में वही अगभराई थी गुजरल 24 कलाक सुठा रहा है लबनान में अमुन रो है अबन हुरमज भी खुलल है अमरीकी नायब सदर जे डी वेंट्स है आलमी तवानाई एजेंसी जहा इंस्पेक्टर ईरान वींदा ए तहरान से थियल मुआदे की निगरानी कंदा इसराइल की दिफा वाले हक के तस्लीम क्यूं था पर लबनान की खुद मुख्तारी जो भी तहफुज चाहूं था गाल दौरान अमरीका पारा तय कल चार ही हदफ हासिल किया
3: पे बात करते हैं बेशरम लोग
4: पंच कर रहे हैं
3: तो बात बल्दिया फैक्ट्री के लिए पहले करते थे वो सही थी या जो कल इन्होंने बकवास की वो ठीक थी मैंने कोई गाली नहीं बकी
4: अब अपने अल्फाज वापस ले ना आपने बेशरम
3: में कौन सा अल्फाज वापस ले लूं
4: ठीक है
3: सर बेशरम
4: वो कहे ना कि मैं वापस ले लेता हूँ
5: माफी नहीं मांगेंगे हम बात नहीं करेंगे इसको माफी मांगनी चाहिए
6: टोटल स्पीच को आप एक्सपेंस करवाए
3: मैंने कौन सी बात की पार्लिमानी बात है इसमें कोई बुरी बात नहीं है राइड करें जो दिल करें एमपीओ में एक थी एमपीओ में एक है और एमपीओ में एक रहेगी
6: बोरी बंद लाशों की एक इनडायरेक्ट धमकी पूरे ऐवान को दी गई है तो इस पर मैं इंक्वायरी का ऑर्डर कर रहा हूं
2: सिंध असेंबली में मुतहदा मेंबर फरहान अंसारी के एमपीएस के बोरी बंद लाशन की धमकी जुमलन की डेवट का हुकूमती अपोजिशन मेंबर्स हथे पे घरू वजीर पारा मुतहदा मेंबर्स की धमकियों वाले मामले की जांच करण जो ऐलान सिंध असेंबली में गलते एमपीए फरहान अंसारी रुगो बोरी बंद लाशन जो जिक्र कंदा हो कद बोरी डिठी अथव बोरी डिसी सकंदा हो अवां बोरी सही भी न सकंदा करू वजीर ज़ियाल हसन अंजार एमपीए अणसिधी तरह ऐवान के बोरी बंद लाशन की धमकी दिनी है ये खतरनाक गाल है मां जांच जो हुक्म दई रो आया कमेटी की अवां सरबराही कयो स्पीकर अवेस कादिर शाह मां इजाजत दियां तो अवां जांच कराए सको था लफ्ज इंतई गलत आहिन धमकियन वाले मामले ते हुकूमती ए अपोजिशन मेंबर सते पेजी विया एक बेके धिका
1: पिनकी कराची जी हुजे या लाहौर जी कानून खा न बचंदी को हीरोइन जी कारोबार करे या हीरन जो न पिनकी बचंदी न को पिनको बचंदो कौमी असेंबली में गालंदे घरू मामलन बाबत मुमलकती वजीर तलाज चौधरी जो चवण हो हुकूमत पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत दुनिया में वधाई है सऊदी अरब 5000 फकीर पाकिस्तान मोटाया दुबई वालन के भी साग्यो ही मसलो है अंग अखर डिना व्या दहशतगर्दी खत्म करे मुल्की मैशत बेहतर करे संची थी

दुनिया में किथे भी सियासी मुखालफन के सजाऊं नथियूं डिनियूं वञनि। 25 हफ़्तनि खां पीटीआई बानी सां मुलाक़ातूं बंदि आहिनि। छा वज़ीर आज़म वटि मुलाक़ात जो अख़्तियार नाहे? पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो क़ौमी असेंबली में ख़िताब। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर दारण जवाब ॾींदे चयो त आइन जी ॻाल्हि था कयो, हाईकोर्ट जे जजिस जी मुक़ररी लाइ आयासीं पर अवां कमेटी में न आया। अदालती मामले में हुकूमत कुझु नथी करे सघे, अवां खे आला अदलिया में वञणु घुर्जे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-383-569-0300-338-569।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-32-04-372
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-35-92-120
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
6: 0301-399-2836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: ब्यूटीअ जो असल राज़ सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर आचर ऐं सूमर।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-33-8556-9।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेहराबपुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहराबपुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार अड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराने ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
6: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज़ भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

अमेरिका स्विट्जरलैंड ॻाल्हियुनि जे नतीजे में ईरान मथां तेल विकिरे जी पाबंदी आर्ज़ी तौर हटाए छॾी। अमरीकी नाणे खाते पारां ईरान खे 60 ॾींहनि लाइ तेल विकिरे या ख़रीद करण लाइ लाइसेंस जारी। अमरीकी नाणे खाते मूजिबि ईरान 21 आगस्त ताईं पेट्रोल ऐं पेट्रोकेमिकल शयूं विकिरो करे सघंदो। तेहरान पेट्रोलियम वारियूं शयूं